प्याला 10 रुपए, प्याला 10 रुपए, प्याला 10 रुपए, माल ही माल मिलेगा सभी, गोल्डन कलर का माल मिलेगा। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, देखने वाले का नजर खराब हो जाएगा सभी। 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, प्याला 10 रुपए, बोलो जी बोलो।